हमरे दुष्ट सभय तुम घावहो, आप हाथ दय मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभय करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करिय, सब बैरन को आज संघरिय।

उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणघाता। जे अस दुजतौ सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित भय मरे। पुरख जवन

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र उदे स्वयंभू स्वंसर दास रूपे दुर्गालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदांग संगे अपंगं रूपे देख देख उपतेन प्रम्बेद्रम याप्त जनान गुरु गोविंद सिंह जी काल प्रभु सहाय दरबार में दरबारा सत्कर्म से रंकारा लक्ष्मी करी दरबारा

सात बजे उड़दाता को नहीं सब सुन लोक सभाया सात बजे पाया जन चो आप गवाया जिन से चो सब बुझाया जिन से चो

कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूपये पार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार कुड़ कुड़ ने होलगा विसरिया करता किस नाल की चाय दोस्ती सब जग चलन हार कुड़ मिठा कुड़ मा